पितरियो अदृष्ट जय कर्मजा सलोक महला पहला पे भांडे साजने आपे पूर्ण दे इकनी दो समाए चूल्हे रण चढ़े।

पौड़ी बड़ी उड़ा बार तेरा मर्तबार रंग ने जापन करतबा जी आंदर जी उस की जान ला सब तेरे बस तेरा कर पला तेरा कर आनंद बधाई तुझ कर माल माता ते जी अपना विचार सर्व कला पर पूर्ति सजित किता नानक दास अंदाज जा गए बिनवंता श्लोक कौन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस रात दुई दाई दया के लै सकल जगत चंगियाई आ मुरियाई वाच धर्म दूर।

सचिया बादशाह कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जह सिमरत गन काशी उधरी। जह सिमरत जिनू सिमर के गणका उधर गई, अजामल ने गत पा ली। जह सिमरत अजामल उधरियो गणका हूं गत पाई। जिनू सिमर के अजामल दे दुख दूर हो गए, गणका ने गत प्राप्त कर ली। महाराज कहिंदे ऐसा नाम जिहड़ा है इह सदा सुखां दा दाता है। जिवें आप जी नाल पहला बचन सांझा कीता सतगुरां दा, सतगुर साहब का की बचन है, जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राजन। सारे सुख गुरु दे नाम विच ने, गुरु दी बाणी विच ने। हजूर साहब अवचल नगर सचखंड साहब दर्शन कर रहे गुरु प्यारियो, गुरु कोले अरदास करियो, मेल लहो दयाल। साहब कहिंदे विण तुद होर जे मंगणा, सिर दुखां कह दुख देहो नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। मन की भुख सतगुर की बाणी नाल उतरनी है, सतगुर दे नाम नाल उतरनी है। नाम बाणी दे नाल जुड़ के मनुख की भुख नहीं, ते नाम तो बिना आतर होया मनुख जिहड़ा है इह भज्जिया फिरदा है, दौड़िया फिरदा है, पर इहदे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। इहदे पल्ले केवल फोकट केवल सुआह पैंदी है, जो अगे सतगुरु जी सानू बख्शिश करनगे। सो साहिब कहिंदे ने

महाराज जी बेनती करते हुए बेनती के रूप में शब्द उच्चारण करते ने नानक दास दर्श प्रभ जाचै। महाराज कहिंदे नानक दास सच्चे पातशाह जी तेरे दर्शनां नूं जाचदा, तेरे दर्शनां नूं लोचदा। आपां दर्शन की गल की ना, सतगुर के दर्शन, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन आप जी तक सब ते आके धन भाग ने साडे, जिन्हां नूं सतगुरु पातशाह जी दे तख्तां दे, गुरु पातशाह जी दे अस्थानां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया। जे इन्हां दर्शनां दे नाल नाल गुरमुख प्यारिओ किते घरे अपने बाणी लै के जाइए, किते अपने ग्रह विखे गुरबाणी लै के जाइए, ते सतगुरु पातशाह जी दी मेहरमत कृपालता किड्डी वरतदी।

अवतार चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं शुभंग सर्वदा सर्वजुते दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे सदा संज्ञा भंगं विभुते देवी कुमुते अनुदावतज नान गुरु गोविंद सिंह तीसरे काल पुरख के सहाय दरबार मित्रो दरबारा सचखंड वच निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबारा सर्व

भजो हरि तपो हरि तपो हरि जपो हरि। जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि। भजस्तु अङ्घटस्तु अङ्घटस्तु अङ्।

त्वा प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गद हा विभूत दारि गिद्वा मसान बास करोई करत है खूक मट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधई मरत है बिंद के सदैया ताहे ही जिके बडैया देत बंदरा सदीव पाए नंगे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध मैं प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है भूत बन चारी छित छाना सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रिण के फसैया धन लोभ के तजैया ते तगौन के जैया वृक भैया मानियत है नभ के उडैया ताहे पंछी की बडैया देत बगुला बिडाल वृक ध्यानी ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पै बखानी नाहे असना प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी कजैया कहे नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है फल के बसैया ताहे बांधरी कजैया कहे आदिस फिरैया ते तो भूत कह बछानी है जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के बछैया सो चकोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धीन चारी लिखी के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राख रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैदि साल सदा व्रत पाल जम चार ते रहत है जोगी जटाधारी सती सच बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है।

फिरत मोर बांदर करत होर दामनी अनेक भाव करे हुई करत है। चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद जारी सन्नत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल हांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा अरबी संकेत वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए हुए बितय है। मोनदी मतार कते अश्विनी कुमार कते अंशावतार कते काल बस भय है। पीरे और पैगंबर कते गन न परत एत भूमि हित होय के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अपमान बुझ दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरद्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे कर अनेक तो चीक पट वेश भोस दिया अनेकता निभावत है। शीस को कहा भयो मल्ल जो पे काटत अनेक दंड सोतनो दंडो दया से डांग अत तीस को कहा भयो रुकी जो पे डार रहे उर्थ मुख मान तेना मुंड निहो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पटकत जाके कान में खजूरा दस मुंड छटकत मित्र बुत रहो के शोक सौ आग को चरैया फूल फूल को भचैया सदा वन को भ्रमैया और दूसरो न भोग सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षर सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोग सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेड़ पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाऊ भूम श्रावक थरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी गहूँ जो किया बरा के बने का बहू सन्यास भेष बन क्या दिखावई। गहूँ पौन हारी गहूँ बैठ लाए तारी गहूँ लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ डंड धारी होय के लोगन फरमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाजन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर अगत अनेक दा पुकार ही। कहा भय जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टा कुठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक थार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के गीत जो पे पायत अजाप देव पूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश मछी डोल बो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बास की भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जो की भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सुविराज करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान वो। एक ही के सेव सब ही कबूर देव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो। देहुरा मसीद सोई पूजा निवाज उई मान सब एक बयान एक को भ्रमाव है। देवता देव जैसे गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

कनु का गोट आग उठ न्यार न्यार हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भछ, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केत नव बीज अच पच को करेंगे बच, के तक प्रतच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज, जैसे तेज लीन।

लापसी घस हर चंदन लगाए हर चो चार बूझ हर पाहन चढ़ाए हर लापसी गा हर गोरन मनाए हर मड़ी मंडली बहारे वितन लगाए हर छापसी गाए हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब पच हर पंडित तप

मंगना पुत्रंगना मित्रंगना सत्रंगना भामंगा लेखंगा फेखंगा जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं नहीं जान जाय कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन फेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं ना वे न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं गत वेखंग वेखंग जूनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे यं परा परं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छय अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उ

नने हंग नगे हंग सने हंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथे न जाते न बाते न सत्रे न मित्रे सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नारंगं न रूपं न रेहं न लोभं न चोभंग भूतंग फेखं न सत्रंग न मित्रंग नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनीय छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भ्रमं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भ्रमं सदेवं सदा सिद्ध

कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सातकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्नया कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वा स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी वस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी।

जहे सत्र मित्र नहीं जन्म जात जहे पुत्र भ्राता नहीं मित्र मात जहे करम भरम नहीं धर्म ध्यान जहे नेह गेह नहीं व्योतबान जहे जात पात नहीं सत्र मित्र जहे नेह गेह नहीं चिहन चित्र जहे रंग रूप नहीं राग रेख जहे जन्म जात नहीं भरम भेख जहे करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जहे नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जहे रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जहे आद अंत नहीं रूप रास जहे रोग शोक नहीं जोग जुगत जहे त्रास आस नहीं भूम भुगत जहे काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अख अभंग जहे नेत नेत उचरंत वेद जहे अलख रूप कथत कतेब जहे अलख रूप आसन अडोल जहे अमित तेज अच्छा अतोल जहे ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत काम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्थ बाह देसन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई गोग गाव कथत कतेव कई अगन होत्र कई पौन हार कई कर्त कूट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नहीं तदव देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आदि करम कहूँ अग्न होत्र

कई तीरथ तीरथ फरमत सो फरम कई अगन होदर कई देव करम कई गर्द वीर विद्या विचार नहीं तदप दास बायत न पार कहु राज रीत कहु जोग धरम कई सिमृत सासरत उचरत सो करम न्यवली याद करम कहु हस्त दान कहु अश्वमेध मख को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जो करीत कहूं बिरद चार कहूं करत जछ गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घदान कहूं पितर करम कहूं वेद रीत कहूं नृत नाच कहूं गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लठकंत जाप कई जपत जो कल प्रंग प्रजांत नहीं तदव दास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदव दिष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन भो कुटो सर्व धर्मा विहीन त्व प्रसाद तोटक छंद जय जम पह जुगण जूह जुअंग भय कम पह मेर पयाल भुअंग तप तापद सरब जलेर धरंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप।

देख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न पात न मात पितं जे रचयं छत्री छत्र चितं जे राग न रेख न रोग बणं जे द्वैख न दाग न दुख गणं जय अंडह दे ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभवत आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपेंद नगेंद नगं श्रेय जच गंधर्व फणेंद भुजंग रच देव देव वेव नरंग नर पाल रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेत ज्योत भुजंगी ये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड कतंग प्रभु जात न बात न ज्योत चुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जम पह किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जे अंडज सेतज जे रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवास तंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग तत चंद्र।

छूत मतंगन गाद ब्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जे राग न रंग न रेख रुकंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत भूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सत सिंध अधोम हुताब तपै कई कल्पन लो तब ताब करै नहीं नैग कृपा नित पान परै जय फोकण धर्म सफैत जह एक चित्त कृपा निध को जब है त्यो याभव सागर को तरह भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है त्यो

नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास सदैव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदैव सिद्ध शुद्ध दा, प्रताप पत्र जानी है। नराग रंग रूप है, नरोग राग रेग है, अधोग ताग तक है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात्माद जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेग सेग भेग है, सदीव विश्ववर्ण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववर्ण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम परम है। अद्वैख है, अभेग है, अलेख नाथ जानी है, सदीव सर्वठोर मैं विशेख अन्न मानी है। न जंत्र मैं, न तंत्र मैं, न मंत्र बस आवई, पुराण ओ पुराण नेत नेत कह बतावई। न करम मैं, न धर्म मैं, न भरम मैं बताइए, गंज आदि देव हैं कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। न हान है, न बान है, समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह है, न गेह है, न जात है, न बाद है, न मंत्र है, न मित्र है, न

को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेग है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न रूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है।

है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैद है, न नर को स्वरूप है, न चल है, न चित्र है, न चित्र

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेद है बलिया रूप राग रंग है न द्वैग है न भेद है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिन्ह वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए।

जाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस तपि पिसेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पिखिय अगाध आद देव की अनाथ बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र सने जानिए सदीव सर्वलोक के

तीर्थ जादरण देव पूजा गौर के नाधीन सर्व सबद बतार के तर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस पर नहि नेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सब।

जाफरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायद चमके भूखण धमके अदित चमके फुंक फलंग जय जय हो सीमासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन धुजा परंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपर खण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन भूमा का सल उर्दे दामनी ब्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ कते रक्ता सुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नाचन धरम वृते श्रोणत अचिंती अनर्विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओख निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ट उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ पकारण सस प्रहारण साध मते

गुंगुरु खमंगण सज मंगण फणियन फुंकारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगम थाहे एक वृते जय जय हो सी मै खा सुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन वृष विनाशन वृत मथे कावरु कुमार अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटी निवारण धम धारण तेज प्रकर खण धुंद तपे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो सी सहस्त्र प्रकर खण आद नील अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आदा तंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन शंभु चक्रतन शंभ मथे बारज बिलोजन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मखा सुर मर्दन आद अनाद अगाध ऊर्धं घंट का विराजे रुंठुन बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरंगो किल सुन लाजे किल बिग भाजे सुखो बराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जय मंत्र रिझे सभ

भूख दह जल मैं थल मैं बल मैं करके नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहं भेव लख्यो ब्रह्म शिव फरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पद मा पद पाए आद अनंत अगात द्वेक्षो भूत भविख भवान भय अंत भीन अनात्मा वादांग दोग छिद्र छह लोकन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है काम न क्रोधन लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छ है जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्रीपद मापत ल है रोकंते और सोकंते जल जोगंते वो भात बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत उतन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर पाव समूहन भेट न पावे और की बात कहा कह दो सो सो भेट ही के बड़ बीच बचावे जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसातर जच भुजंग सब है सिरन्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ बिलगायो वेद कतेव न वेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो दे को मन में जय को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब है पजहारे वेद न पाए सके न भेद वो खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाद अवेग अद्वेग जप्यो तन ही गुलतारे तीरथ कोट किए स्नान दिए गोदान महाव्रत धारे देश फिर कर वेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे मोहन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित्त छत्र के थरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल हैं दान के देवैया महामान के बढ़ैया वसान के देवैया हैं कटैया जम जाल हैं युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्याव गोर कर देजी गुण गाव तेरे नाम है जोग जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी मारे कंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मर टाम गेरे तेरी मान सो तपस्या कर दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आगे में चलत है रोह के रोहले मांग देश के मंगेरे वीर बंग से बुदेले बाब पुंज को मलत है गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस न्यावे ते बते दे आए दुख देव के दलत है जिने दोहे दायो तिने पूर्ण प्रताप बायो सर्व धन धाम फल फूल सिंह फलत है देव देव तान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है पाई ये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचाता है चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जच कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पार अवार पाई है न पार पे अपार के बखानी है अद्व अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है
जंत्र हूँ न जात जा के बाप हो न माय ताकि पूर्ण न प्रभा की सो छटा के अन्न मानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तार है का राजसी को सार है का शुद्धता को घर है का सिद्धता की सार है। कामना की खान है का साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उतार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है गया छ अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है। जो गहूँ को यंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को वरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार परावार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हल पिथ है पूर्वी न पार।

देव हो के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहिया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया ध्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसे छीरावत छाछ कैसी छतरा ने रक्षा पाकर कैसी छब काल द्रिक कूल के। हंसनी से सिंह रोम हीरा सी हुसना वैद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा के सी रामपुर सूरा सी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा से हिमालय हर हार सी हलाबा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगदार बकान सी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है। भखरी कंधारी गोर कखरी करते जाचारी पौन के हरि तेरो नाम जाइयत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दया ताप नाथ।

0: नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहित चितलाय पूर्ण करो ग्रंथ तुम करो
1: सहाय
0: तो भंगी छंद श्री काल की उस्तत खग खंड

दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। वाकई जन्म मरण कटिया जाता श्रद्धा भावना दे नाल किते दर्शन ते गुरु दे करिए। गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी दे दर्शन जिन्ने जिन्ने भी श्रद्धा भावना दे नाल किते ओ तारी गया ते जिन्ने जिन्ने उन्हां दे घर दे विच रह करके सेवा कीती उन्हां दे पास रह अज उन्हां दीआं कुलां भी आनंद दे विच ने ते पातशाह जी दे नाल जुड़ियां होईआं आप जी दे दर्शन कर सकदे जे। गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी दे नाल बहादुर बाबा विधि चंद जी रहे अज उन्हां दी संपर्दा है अज उन्हां दे नाम दे उत्ते गड्डी चढ़दी कला दे नाल सेवावां चल रही जिथे किते उन्हां दीआं छौनियां जिथे किते उन्हां दीआं फौजां मिलदियां ने पातशाह जी की कृपा महाराज जी दे नाल जिन्ना जिन्ना भी रह करके सेवा ने बाई उन्हां दी चढ़दी कला होई अते अगां भी चढ़दी कला सतगुरु जी कृपा करन सदा चढ़दी कलाई रहे। गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी का प्रकाश होने दे नाल जगत रोशन आ गया क्योंकि वखरा एक संदेश गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी नूं पातशाह जी ने पंथ नूं बख्शिश कीता। हुण समा आया इत्थे गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी का प्रकाश गुरु की बडाली विखे हो चुका है। हुण समा आया बड़े जतन किए गए भी इस लाल नूं खत्म कर दिता जाए कई बार जतन कर करन दे बड़े ज्यादा जतन किए गए पृथ्वी चंद दे वल्लों होरना दे वल्लों पर सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी चढ़दी कला दे विच रहे। हुण समा आया गुरु अर्जन देव पातशाह जी शहादत का जाम प्राप्त कर जाते हैं। पहले ही पातशाह जी ने गुरु के कोठे विच भजन किए सन बाबा बुढ़ा साहब जी नूं प्यारे सिखां नूं पास बुलाया भी अगली जिम्मेवारी यह बाल सामभ सकेगा। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने भजन किए पातशाह जी तुहाडा अंश है तो जरूर सामभेगा तो वक्री नुहार पंथ नूं बख्शिश करेगा। फिर गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा साहब के भाई गुरदास जी के पासों एक थड़ा बनवाया थड़ा बनवा करके उथे पातशाह जी फिर आप सजे ते उथे पातशाह जी ने दो तलवारां धारण कीतियां मीरी ते पीरी दी जिथे सिख दे वास्ते भगती जरूरी है उथे धर्म दी राखी दे वास्ते शक्ति भी बड़ी जरूरी है ताकत भी बड़ी जरूरी है। पातशाह जी ने आख्या जेकर अपने धर्म दी राखी करनी है फिर उथे शस्त्र चुक लवो किसी गरीब के उत्ते किसी मात्र के उत्ते जुल्म हो रहा है उस वेले जबर नथ पाउण दे वास्ते तलवार चुक लवो। गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने वड्डी बख्शिश सिखां दे उत्ते कीती। एक गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी के प्रकाश का प्रसंग आप जी दे नाल सांझा कीता है। आओ जिहड़े दो हुक्म हुण संगतां दे वल्लों आए ने साडे प्यार वाली फौज बेअंत ही प्यार सतकार आप सारी सिख संगत बख्श रहे हो दखनी सिख संगत दखनी सिंह बड़े प्यार सत्कार दे नाल ओ हाजरी भी भर रहे ने। आओ मैं बहुता लंबेरा समा नहीं लैना गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी की सिफत दे विच के तन मीरी पीरी वाले सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह सतगुरु जी तुसीं सिखां दे अंदर वखरी नुहार बख्श दित्ती है। आओ छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी की सिफत नूं दर्शाउंदी हुई रचना मीरी पीरी वाले पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी की सिफत दे अंदर कवीशर जथा इंज बिने करदा

संगत प्यार दे विच आओ ते आखो धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी महाराज नाल ही सारी सही संगत प्यार दा सबूत देंदे होए आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुरु जी कृपा करन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी दे दर्शन जिन्ना जिन्ना भी कीते ओ तरे जिन्ना जिन्ना सेवा कीती ओ भी तरे ते किते गुरु घर दे विच सेवा करदियां भुल हो गई पातशाह जी ने बख्श भी दिता भाई गुरदास जी नूं एक बार पौड़ी पढ़द्या हंकार आया पातशाह जी ने उन्हां नूं भी फिर बख्श दिता बेनती कृपा गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी ने की आओ समा पिछे थोड़ा जिहा रह गया है ते जेड़ी जेड़े हुक्म मैनूं फौजां दे वल्लों होए ने ओ रचना आप जी दे नाल हुण सांझियां करनियां ने दो रचना ने एक हुक्म होया है नीले दया शाह असवारा तेरी करनी तों बिहार ते दूजी रचना जिस रचना नूं संगत ने बेअंत प्यार सत्कार बख्शिश कीता है करके मेर मेरा दया साइया अपना जस करवा लेना खिड़े आनंद लहर विच रहिए चंद्री चिंत सतावे ओ ये दो रचना कह करके असी खिमा दे जाजक हो जाना है आओ पहला गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी की सिफत दे विच आप जी दे नाल रचना सांझी करनी है आप जी दर्शन कर रहे हो दुनिया के उत्ते बथेरे वीर बथेरे पैगंबर होए पर गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी का सानी कोई भी नहीं हो सकिया क्योंकि कवि लिखता दानी बड़े ने जगते दान करते दसम पातशाह जा दानी कोई तकिया ना पिता तोर के ग्यारां दे धर्म बदले रुलदी किसे दी पत नूं टकिया ना बई बड़े राहां दे विच तूफान आए राही मंजल ते पहुंचदा थकिया ना चारे पुत ही देश तों वार दिते कोले एक भी निशानी नूं रखिया ना धन ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी अपना सब कुछ वार के कहिंदे पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाउ कनेरा धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह सतगुरु जी महाराज जी की सिफत वैसे तो मैं पहला वजन किया उन्होंने सिफत हो ही नहीं सकती पर कवि ने कोशिश की कि नीले दया शाह असवारा तेरी करनी तो बलिहार कदे ते तिखियां सूलां दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी आनंद नाल सुते पए किते गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी नूं दाई थवकदी थक जांदी पातशाह जी उत्ते आराम नहीं करदे पर धन कलगीधर पातशाह महाराज अपने चारे लाडले पुत पुत वार करके ताई भी कहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिवें जिवें हुक्म लगाया सी उवें उवें हुक्म नूं पगाया है आओ गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी दी सिफता कलगी वाले ने अमृत दी दात बख्शी बई खेडां खेडियां खालसे निहारियां ने कदे साडियां सिरां ते मुल पै गए कदे चलियां सिरां ते आरियां ने शेरां वांगू हौसले बुलंद रखे साडे अगे हकूमतां हारियां ने गल्लां नाल नहीं साहिब सिंघां माण मिलिया सिर दे के लईआं सरदारियां ने ए सरदारियां धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी दी बदौलत है आओ करिए जी उन्हां दी सिफता नीले दया शाह असवारा तरी करनी तों बलिहारे ढाव सरियां दा कवीशर जथा इंज बिने करदा

सेवकिति संतोखी जी सचो सस्ते आया और मंदा पैर नख्यो कर सुकृत धर्म कमाया और दुनिया तोड़े बंधना पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला नित दे।

कोठे मंडप माड़िया ला बैठे कृपा सारिया चीज करन भाव जर बुजन आई हारिया कर फरमाइश खाया वेक महलत वरण विसारिया जरियाई जो बन हारिया जरियाई जो बन हारिया।